0: बहुत को
1: और एक ही जड़ा ये मैं आप जी दी नजर कर दी है विशेष करके
0: थैंक यू जी
1: जड़ा हुन मैं सुनाने लगी
0: हां जी

उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

सो दोस्तों गल इदा है भाई, सोचने वाली गल ए है कि हजारां साल बीत गए ने ते 80 साल सानू आजाद होयां नू भी हो गए ने। ठीक है जी, साडे च कोई बदलाव या क्रांति क्यों नहीं आई, चक्कर की है? साडे तो पिछले अगे निकल गए, रौला रप्पा बहुत सुनिया पर अंत विच ओही बाबा रामदयाल ते ओही भूरी खोती, सारे खोते पार्लीमेंट च बह गए ते साडी खोती बोर्ड थले खलोती। हां जी, बदलाव नहीं आया कोई। हुण तुसी सोचते होगे कि क्यों बदलाव नहीं आया। हां जी, साडा रहण सहण बदल गया, लफजां दे मैने

अकेले में अकेले फिरी बाजार घर में, कौन सा बनाना बहाना बहाना बहाना, मैं जमला पकला दीवाना।

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं जट जमला अगला दीवाना।

0: ये घोड़ा चतुरा
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
0: एक चतुर नार करके चिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात। अरे

मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतियों,

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात।

0: a Git horse from the Nintendo Shinda.
1: भाई बल्ले बल्ले बल्ले भाई आज तो नजारा आ गया भाई
2: आप यूं देखो ना जी कितनी छोटी जन लेके आया है
1: लो भाई अमली का ब्याह भी हो गया वो ताली देता वाले
2: हां भाई
1: ला तो शिंदे का नवा गाना और शिंदे का लाई भाई जितना बहुत पैसा पैसा हो जाए
2: आप माल को ला देने आप पैसे नहीं लेने थोड़ा
1: भाई वाह वाह वाह

ऑफ कोर्स प्रभाग रेडियो पीआर रेडियो स्टेशन एक्सपोज योर सेल्फ ऑन यू सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड विद योर वॉकिंग आईज एंड एक्सपीरियंस वी आर ऑनली

0: हेलो
1: जी बीबी रानी, आप जी नू प्यार भरी सत श्री अकाल ते स्वागत है। तो
0: हेलो
1: जी बीबी रानी, आप जी नू प्यार भरी सत श्री अकाल ते स्वागत है
0: सत श्री
1: तुहाडा
0: अकाल
1: प्रवास
0: जी।
1: रेडी

0: भजन
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: बेला क्यों मोहसला टाया, इष्ट दी खेड खेडी जा।
1: वाह
0: बेला क्यों हौसला हटाया,

0: वाह वाह, बहुत खूब।
1: रुखों को जरा बैठी जो सोचने, मन की तुम्हें मुस्काए, मन तुम्हें मुस्काए, धकियों के झरोखों से मुझे

0: यू सर।
1: वाह जी वाह, ज्योति जी तुम ही
0: पता ही मौका कद मिले।
1: ज्योति जी तुम ही तो बहुत खूबसूरत गाँवे हो।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: अच्छा, नहीं तुहाडी आवाज बहुत प्यारी है, तो दब के रियाज करया करो जिन्ना भी हो सके।
0: जी जी जी हुन शुरू कर दिता सर रियाज,
1: अच्छा अच्छा
0: हुन
1: अच्छा
0: अगे लोक जागरण भी मिल गए।
1: अच्छा जी, बहुत बहुत चंगी गल है। ते
0: हां जी
1: इस तरह के अपना संडे नू शायरो शायरी का
0: हां जी
1: प्रोग्राम हुंदा है, ते आया
0: जी जी
1: तुसी एक मैनू मिस कॉल मार दिया करो, ते वेट करो, कोई हो सकता 10 मिनट बाद मैं तुहानू आप रेडी हो के रहना, मैं तुहानू कॉल बैक कर दिया करांगा, ते तुसी
0: ठीक है सर,
1: कोई
0: ठीक
1: गाना जो भी तुहाडा दिल करे तुसी सुनाया करो।
0: ठीक
1: हाँ जी,
0: ठीक है सर, ठीक है
1: ते
0: सर
1: मैं तुहाडे नाल एक शेयर करांगा
0: जी।
1: के माला पा के बन गई साधनी ते हर मंदिर गेड़े लाए,
0: हाँ जी
1: राम नाम मन ना वस्या अखां मीट के टल खड़काए,
0: जी
1: पहला कपड़े फिर तन भी रंगिया पर मन रंगिया ना जाए,
0: जी
1: ओ ना ना थकी तीर्थां ते पर अंदरों मैल ना जाए, ओ ना ना थकी तीर्थां ते
0: वाह
1: पर
0: वाह
1: अंदरों
0: वाह
1: मैल ना
0: वाह
1: जाए। ज्योति जी
0: वाह
1: मेरी
0: वाह,
1: तरफों गुड विशेस तुहाडे नाल, ते
0: थैंक यू
1: जोगिंदर जी
0: थैंक
1: उन्होंने
0: यू सर
1: भी मेहरबानी जिन्ना ने
0: जी जी
1: तुहाडी साडी मुलाकात करवाई है, ते अगले
0: हाँ जी
1: हफ्ते फिर होवेगी तुहाडे नाल मुलाकात, ते मेरियां
0: चलो।
1: गुड विशेस तुहाडे नाल।
0: सर मेरे हस्बैंड ना भी गल करियो।
1: लियाओ जी,
0: हेलो
1: जी हाँ जी
2: हाँ जी बाजवा साहब, सत श्रीकाल।
1: सत श्री अकाल वीर जी, की हाल चाल ने तुहाडे?
2: वधिया वधिया सर, तुसीं सुनाओ।
1: बस मैं सुनाओ नहीं डिया, 2.5-3 घंटे हो गए जे इत्थे गल्लां ही करदे
2: नहीं नहीं बहुत वधिया बहुत वधिया। केड़ा?
1: तुहाडी आवाज कट्टी गई है।
2: हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं क्या गुरदास, तुहाडी आवाज आ रही मैनूं साफ क्लियर आ रही है।
1: अच्छा, ते कि तुसी कुछ पुछया सी ते मैनूं सुनया नहीं।
2: हाँ मैं क्या, तुसीं गुरदासपुर तो या पठानकोट तो?
1: मैं है ते गुरदासपुर दा, उस तरह पठानकोट भी उत्थे साडी कोठी है, ते पिंड भी
2: ओके
1: रही दा ते पठानकोट भी रही दा, क्योंकि उत्थे परा बड़ा सोहना माहौल शुरू हो जाता पठानकोट तो अगे
2: पठानकोट
1: जम्मू
2: किथे,
1: तक,
2: पठानकोट किथे कोठी?
1: जिथे हैगा ना मतलब कि पुराना रेलवे स्टेशन जेड़ा ही, एक ते नवा एक ते
2: चक्की
1: सेंटर च
2: चक्की
1: है
2: बैंक,
1: ना, एक ते सेंटर च
2: हाँ
1: रेलवे
2: पुराना रेलवे
1: स्टेशन, एक
2: स्टेशन,
1: बार वाला जेड़ा
2: हाँ बार वाला चक्की बैंक वाला
1: चक्की बैंक, चक्की बैंक ओदे लागे ही है, असी
2: केड़ा
1: मंडी
2: एरिया
1: दे
2: दसो?
1: कोल, मंडी जितनी जेड़ी
2: अच्छा
1: हैगी।
2: मंडी दे कोल, ठीक
1: हाँ
2: है
1: जी
2: ठीक
1: हाँ
2: है।
1: जी हाँ जी, उठे जाए
2: मंडी दे लागे पूरा कच्चे क्वार्टर है, गया प्रेम नगर है, इधर फिर ढाकी है।
1: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल उधर के जाए ही
2: ओके ओके, दे
1: मैं
2: पिछो पिंड
1: बहुत
2: केड़ा?
1: बहुत वाकब नहीं पठानकोट तो, हालांकि मेरी राही रहने उत्थे भी हाँ,
2: मैं क्या पिछो पिंड केड़ा जी?
1: बटाले दे लागे पिंड है शीना।
2: ते मैं तुही शीने दे, ते मैं कलानौर तो
1: अच्छा, कलानौर दे तो मैं बहुत सारे लोगों नु जानना
2: जिन्हें
1: कलान।
2: मैं जी बेदी परिवार, मैं बेदी फैमिली तो हाँ जी, पिछो पाकिस्तान तो आए हैं, डेरा बाबा नानक कलानौर मेरा जद्दी बुश्ती खानदानी घर है जी।
1: ठीक है जी ठीक, मैं तुहाडे इलाके नु बहुत चंगी तरह जानना, डेरे अपना
2: हाँ
1: कलानौर
2: मैं
1: नु भी।
2: मेरे दादा जी वैल सी सरदार पूरन चंद सिंह बेदी, मैं उन्होंने पोतरा जी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
2: हरप्रीत
1: ठीक
2: मेरा
1: ठीक
2: मेरा नाम ओदा, मेरा नाम हरप्रीत सिंह बेदी है,
1: ठीक है जी।
2: ते इथे जॉब कर रहा सेल्स एंड मार्केटिंग चा,
1: अच्छा,
2: ते पार्ट टाइम मैं डॉक्टरी भी करदा जी।
1: ठीक है जी, तो तुहाडे नाल फिर मुलाकात होएगी, मैं तुहानू प्राइवेटली तौर ते टेलीफोन करांगा, ते फिर मतलब कि
2: जरूर
1: क्योंकि मैं
2: जदों मर्जी
1: जानना
2: बाजवा साहब।
1: ये सारे इलाके नू मैं बहुत चंगी तरह जानना जिहड़ा तुसीं नाम लिया, इस इलाके दे मुंडे बाहर
2: नहीं
1: भी
2: मैं
1: ने इत्थे साडे कोल
2: खास
1: ही।
2: कलानौर तो ही हां, मेरे फादर साहब आर्मी सीगे, पूरी
1: अच्छा
2: फैमिली आर्मी सीगी।
1: ठीक है जी ठीक है,
2: हां
1: ते
2: जी दादा जी साडे वैल सीगे,
1: मेहरबानी।
2: ते सरपंची साडे को रही है कलानौर दी, 35 साल सरपंची मेरे दादा जी ने कीती है।
1: अच्छा जी अच्छा, ते अपना बहुत चंगा लगा वीर जी तुहाडे नाल गलबात करके। हाँ जी, क्योंकि टाइम हो
2: जी,
1: गया हुण मैं अग्गे नहीं जा सकता अपने टाइम तो, ते
2: नहीं नहीं कोई गल नहीं कोई गल,
1: बहुत खुशी हुई ते तुहाडे नाल मुलाकात हुण हुंदी रहेगी। ठीक है जी,
2: जरूर
1: मेरे
2: सी जी,
1: वालों
2: जरूर
1: आप
2: सी।
1: नू प्यार भरी सत श्री अकाल सारे नू
2: सत श्री अकाल जी, सत श्री
1: जी।
2: अकाल, तुहाडा
1: ओके,
2: बहुत
1: थैंक
2: वधिया लगा जी तुहाडे नाल
1: यू,
2: करके।
1: हैव ए नाइस टाइम। ओके जी,
2: थैंक यू थैंक यू।
1: सो ये सन जी मल जी हुणी, ते उन्हां दे घर कोई गेस्ट आए सन, ते उस लेडी ने भी गल गाना सुनाया, ते उदां दे हसबेंड ने भी प्यार नाल गलबात कीती है, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਲ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਐਂਡ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਆਲ ਦੀ ਲਵਲੀ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ।

वारिया, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जिहड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओह टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट।

हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर टोरंटो। जी दोस्तों, हाँ तुसी सुन रहे हो www.parvazradio.com खेड़ा लाइव शो, जानकारियां भरपूर। दोस्तों आज असी गुरु रविदास जी दे बारे दे विच थोड़े नाल कुछ जानकारियां दी सांझ पावांगे जी। ते उना दे शब्दां नूं आवाज देणगे दिल्ली तों आराधना सिंह जी, जो के बहुत ऐसे कट सिंगर हन, गायक हन, जो के गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्दां नूं गाउण दे विच महारत हासिल करदे हन जी। आराधना सिंह जी जो दिल्ली विच रहिंदे हन, उना दे विचो एक है जी। ते आज असी उना दे मुखार बिंद तो श्री गुरु रविदास जी दे कुछ शब्दां दी सांझ तुहाडे नाल पावांगे जी। साडे नाल जुड़ चुके हन।

0: घोड़ा चतुर
1: एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
0: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार यह घुटत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

आवाज दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबूआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

पेट में बुकड़क पाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं यमला पगला दीवाना हो रहा।

0: वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दें, उसके बाद आप जी वाल आवांगा, आप जिया जिया गाला लाऊंगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हाँ।
1: दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, अदाब, तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज। न्यूयॉर्क तो, न्यूजर्सी तो, यूएसए तो मैं हाँ तुहाडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक। तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो फ्रैंकफोर्ट जर्मनी। सो अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत हो रही है जी, तुहाडे नाल रल मिल के प्रोग्राम दी शुरुआत कर रहे हैं। ओ, बड़ा सत्कार जो सारे वीर भैन भरा इस प्रोग्रामा विच जिन्ना भी साथ दिंदे ने, सुनदे ने प्रोग्रामा नूं, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। दोस्तो तुसी फोन कर सकदे हो जदों भी तुहाडा दिल करे, और प्रोग्राम दे पहले अद्धे घंटे विच असीं गीत लाउने, उहदे विच तुहाडी कॉल भी आ सकदी, कोई मसला नहीं। उस तों बाद फिर प्रोग्राम चालू हो जांदा जी खबरां दा, तो फिर डाक्टर साहब दा, फिर आपां कॉल उहदे विच नहीं लै सकदे। सो जे तुहाडा दिल करे तो तुसी अपने कॉल जिहड़ी है हुण तों लैके अद्धे घंटे तक विच विच तुसी कर सकदे हो। सो लो गीतां दे नाल शुरुआत करदे हां जी। ते मेरा फोन नंबर तुसी जे कॉल करनी होवे ते अमेरिका दा नंबर है जी 732-874-3259 दे उपर तुसी कॉल कर सकदे हो। दूसरा नंबर है जी 856-397-0301। सो ये अमेरिका दे नंबर दे उपर तुसी कॉल कर सकदे हो। बड़ा शुक्रिया, धन्नवाद, मेहरबानी। लोग ही सुनदे हैं जी अपना एक

वारिया, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबोलाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुई, मलका इतरंदम नूर जहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जिहड़ी हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जिहड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर इहदे आर्ट विच इहदी आवाज जिहड़ी आ ओह टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जिहड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता, बिल्कुल नसीबोलाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजणो, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुणाउणा, ओहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वाली, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजणो के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तों दूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा है, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तों दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी तो उसे घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नू ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, ओ क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बन के, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तों दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदर नहीं वड़ सकती, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, ओ लोकी ज्यूंदिया दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर के मशहूर होण वास्ते मरना पैंदा पहलां, अन्नदाता क्यों भुख दे नाल मरदा, ते बाणिया क्यों नशे विच चूर हुंदा,
ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਟੂ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਖੋਰ ਕਿਉਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਕਮ ਝੂਠਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।